फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: like a snake.
1: Amichana.
2: That is my opinion, whether you agree or not. It's totally up to you.
1: Next, on Sunrise.
3: Sunrise Radio.
1: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Ultra Vitamin D, the sunshine vitamin from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
4: TilesDirect.com. Explore the world of tiles from the comfort of your own home. With over 35 years of experience, TilesDirect is one of the UK's largest tile stockists. We pride ourselves on a second-to-none reputation for customer service and providing the best quality product at the lowest possible price. TilesDirect.com, your one-stop shop for wall and floor tiles for use throughout your home. Just a click of a button is all you need. Visit TilesDirect.com and buy online at unbeatable prices. High-quality tiles at affordable prices.
5: जी टीवी एच डी पर देखिए तुमसे तुम तक
6: अगर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया सजाने में जो मजा आता है ना और किसी चीज में नहीं आता
7: ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई
8: मेरा ये क्या हो गया तुम मेरा तुम उठ क्यों रही आंखें खोलो मीरा
9: क्या होगी मीरा की अगली साजिश
8: अनु तुम प्लीज जल्दी आ जाओ
7: क्या हुआ यश भैया
8: मीरा आंखें नहीं खोल रही
9: अनु और आर्यवर्धन क्या मीरा के हर झूठ और साजिश को बेनकाब कर पाएंगे देखिए तुमसे तुम तक आज शाम 6 बजे जी टीवी एच डी पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
3: Start touring.

0: PM on Star Plus and Geo Hotstar.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favourite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
2: And today gold is trading at £101.49 per gram.
3: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ जेमिन फूड्स द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त।

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फायरिंग फ्रॉम स्काई स्क्रिप्ट।

0: London, get ready for an unforgettable night. One UK show only. Legendary Ustad Raat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan, comes to the O2 Arena, London, on the 18th of April, 2027. To you by Pantheon, performing all of his greatest hits and a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan. Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct. Tickets at Ticketmaster and AXS. Radio partner Sunrise Radio.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Frontier Ras. If your big wedding day year is 2027, our new bridal and men's groomswear collections have arrived in store. Also, not forgetting the glamorous guests. Party season is here. We have a genuine 30% off on all new stock. Lengas, ready-made outfits, saris and unstitched suits. Frontier Ras, 90 Great Hampden Street, Birmingham. And our flagship store, 39 South Road, Southall.
4: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
5: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn, and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
6: Coming up, a bit of weird and wonderful.
7: Rastafari, Dundee.

0: Coming up, it is Just You with the one and only Alicia Chinoy. Keep it locked.
1: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy three nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel, pay less, enjoy more. Southall Travel, at all protected.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208 909 3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
3: Beautyfect, the sell-out portable luxury beauty box for flawless makeup, now brings you a luxury range of beauty accessories, including the new matte gold makeup brush collection, Beautyfect blender for airbrush application, and a range of beauty products to suit everyone, including a 100% mulberry silk eye mask, crystal nail file for manicured perfection, and stylish beauty storage solutions. Save time, look good, feel great. Always look your best with Beautyfect. Visit beautyfect.com or Harrods.
4: India Wala Paneer, winner of the Great Taste Award 2026. Delicious, soft white and natural paneer. The taste of home, the taste of India. Available at your local Asian supermarket.
5: England mein hum pani ka istemal utni tezi se kar rahe hain jitni tezi se prakriti ise dobara bhar nahi sakti. Agar kuch nahi badla to 2055 tak hame har din 5 billion liter se bhi adhik pani ki kami ka samna karna pad sakta hai. Aur Wales mein adhik geeli sardiyan aur adhik sukhi garmi पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर इको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसके इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
6: इस फेस्टिव सीजन पे मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम, शायोना, जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं। सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस। मठिया एंड चोरा फली 3 for £4.50 और घुघरे का तो जवाब ही नहीं।
7: अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर। Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Also, selected lines available at Morrisons, Tesco's and Sainsbury's throughout the Diwali season, or order online from shayonauk.com.
8: The greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio.
0: Coming up, a strange superstition from around the world. But first, it's Just You with Alicia Chinoy in the UK's biggest Asia mix. You're locked in to Nads.

0: newer Pepe's are the Pepe's Melts. Flame grilled flavor, toasted to order. Our chicken melts, flame grilled chicken, melted cheese, flavor packed toppings, all stuffed into toasted focaccia. Prefer veggie? Our paneer melts bring the same flame grilled magic. No compromise on taste. And you choose your filling. Smoky barbecue cheese melts or fresh tomato salsa cheese melts. Either way, it's proper flavor. Pepe-licious. Chicken or paneer, barbecue or salsa, your melt your way. New melts only at Pepe's.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Hey, have you heard the news? Mohanji! Yes, Mohanji! He's really coming to town! Come, join the festive fun and divine celebration of life. There's yummy food and bhajan jamming, bringing all communities together under one roof in Wembley Park at 27 Patidar Center on Sunday, 25th October at 2 p.m. Don't miss out, guys! Not every day you get a chance to be with a living master. Get your tickets now at mohanji.org/UK.
1: गोल्ड लेना है वसीम ज्वेलर्स आए, पुराना गोल्ड बेचना है वसीम ज्वेलर्स आए। At Wasim Jewelers, you can shop beautiful gold jewelry or sell your gold at competitive rates. Visit us at 130 or 90 the Broadway South Hall today. Wasim Jewelers, सबसे सोना सादा सोना।